0: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
1: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है, महाप्रभु जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
6: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट।
7: And that kind of victory is truly astonishing, and I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
8: The results with the BJP winning more than 200 seats clearly answer those questions. Our teams on the ground, in the studios, in the newsroom, we keep tracking every twist. We try to stay away from the noise, try to use the election analytics to bring the coverage together for you. 90% voting is not common. That's 140 elections with less than 70%. Tuvendu Adhikari leading at this moment. 5 states, 824 assembly seats, an election that felt more like a war.
3: Again, going to shift focus to West Bengal, bring in our colleagues from the ground as well.
8: We've got some breaking news just coming in.
9: Kanchan Gupta to wear this morning. Green was not one of them. Kanchan, now what's going on here?
3: Khela ho big.
10: Vijay is finishing off every existing political force.
9: This holds, Pradeep Gupta will be dancing. Joining us now, live and exclusive on NDTV, the architect of this historic victory.
11: Janta ko badhai de raha hu.
9: To all our viewers who've joined us in this long day, thank you very much for spending your time, for trusting NDTV.

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: Welcome back to Sarith Kaur Sahani, and you're watching NDTV. Well, investigation has deepened into the chilling murder of Suvendu Adhikari's PA, Chandranath Rath. A new video shows moments after Chandranath was shot, along with a couple of fresh CCTV footages, which have now surfaced. But these could hold, in fact, vital clues for the investigators. A 9-member SIT has begun its investigation into the murder case. FSL teams have inspected the crime scene and even gathered crucial details. Now, sources say that investigators suspect the role of 5 or more people in the murder, but identifying the suspects is proving to be a challenge as CCTV footages are hazy. The family of Chandranath is now demanding justice, with his mother seeking life term for the killers. Meanwhile, Suvendu Adhikari called this a political murder. On that note, we begin to a very short break. More news and updates on the other side. Stay with us.
2: आपने तो दीदी को एकदम
0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: 21 डेज इन कश्मीर, पीपल हैव बॉम्बार्डेड मी फ्रेंड्स विद रिक्वेस्ट फॉर एन अनफिल्टर्ड लिस्ट ऑफ थिंग्स आई सॉ एंड ऑब्जर्व्ड ऑन द ग्राउंड।
4: वेरी स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट फ्रॉम द लाइन ऑफ कंट्रोल, देयर वर सम चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट लिम्ब्स इन द शेलिंग।
3: They are now India's smallest but possibly the most powerful crime family. Cough syrup has killed at least 25 children.
5: कोई जरूरत उसको इंटरव्यू देने
3: की? डाइकॉर्ड साहब ऐसे मत कीजिए।
5: लोग देख रहे हैं तो कर रहा है।
3: Suddenly people are wondering about the weaponization of India-Pakistan cricket. We live and breathe elections. You will not believe your eyes or ears when I show you what I'm about to.
6: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
3: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
4: The line of control, Shiv Arun, NDTV.
7: Launch control, 0 to 100.
8: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
9: This car makes no sense, yet it makes every sense.
10: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
8: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
11: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
12: So many attacks.
11: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
12: It's incredible.
11: He has seen history break. Live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
12: Welcome to Left, Right, and Center.
11: Hard facts.
12: War-struck country.
11: Hard questions.
12: In the Ukraine.
11: 30 years of trust.
13: In the Kargil area.
12: North Ukraine.
14: In France. In Italy.
12: At Srinagar.
15: Vishnu Shom for NDTV.
11: Vishnu Shom. Only on NDTV.
16: Economy, business, world, technology.
17: Noise filtered.
16: Numbers decoded. Insights that rewire your worldview. From governance to growth, we connect the dots. Your daily edge, your global advantage. India Business Report with me, Gauri Dwivedi. Weeknights on NDTV Profit.
18: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
19: वाह मामा क्या स्वाद है।
18: अरे मेरे राजा
10: का राजा आर प्योर मसाला।
9: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
3: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेश घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी पटिवट है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
8: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का
1: है बंगाल का,
13: उड़ीसा का है, महाप्रभु जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
14: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
20: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट।
21: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.

0: bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
1: Illegal migrant, ये बांग्लादेश से घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है, रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।

0: bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
1: Illegal migrant, ये बांग्लादेश घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार.
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ. भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड.
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है. महाप्रभु जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की है.
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री.
6: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट.
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला।
4: इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है।
5: आज के की खावे झालमुड़ी ना माचर झोल।
3: How will you celebrate?
4: झालमुड़ी माचर झोल विद रसगुल्ला।
6: You know, you remember, you promised me that you will come to Kabini and do an interview with me. You like going to the forest?
7: This is a declaration of our state that to the entire country that our Kerala is secular.
8: ये विजय बंगाल की जनता के विशेष करके मातृशक्ति की।
3: One clip that went most viral was the non-interview. Cruz spent some time with him. We have these whistles out for you, and the whistles are for the fact that you got the poll right, which is quite fantastic.
9: We saw you campaigning, ma'am, for the RG Kaur victim's mother as well. You know, that was a telling moment. Do you believe that that incident in some ways was a tipping point?
10: I think that was not the only incident.
11: Tabhi puran khule তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
12: ইকোনমি, বিজনেস, ওয়ার্ল্ড, টেকনোলজি, নয়েজ ফিল্টার্ড, নাম্বারস ডিকোডেড, ইনসাইটস দ্য রিওয়ায়ার ইয়োর ওয়ার্ল্ড ভিউ, ফ্রম গভর্নেন্স টু গ্রোথ, উই কানেক্ট দ্য ডটস, ইয়োর ডেইলি এজ, ইয়োর গ্লোবাল অ্যাডভান্টেজ। India Business Report with me, Gauri Dwivedi, weeknights on NDTV Profit.

0: Welcome back. Well, in just a few hours from now, West Bengal's political future will enter a new chapter. The fog of suspense in West Bengal will dissipate at 3 p.m. in Kolkata, when the BJP Legislative Party meeting will convene to elect their new leader, a day after the Bengal Legislative Assembly was dissolved. This high-profile meeting has BJP heavyweights deployed as central observers. Home Minister Amit Shah presides as the central observer, I beg your pardon. Along with him, Odisha's Chief Minister Mohan Majhi is joining him as co-observer. During this meeting, Amit Shah is expected to announce the name of the next Chief Minister of Bengal. Following this, the newly appointed BJP Legislative Party leader is expected to visit Lok Bhavan with the letter of support of the BJP's 207 MLAs and stake claim to form the government. The new Chief Minister of Bengal, BJP's first in the state, will be sworn in tomorrow at 10 a.m. on Kolkata's Brigade Parade Ground. Manogya Loiwal has been tracking all the latest details for us. She joins us live from Kolkata this morning. Manogya, break down for us. What are you hearing from inside the BJP camp this morning? We're given to understand all indications continue to point towards Shuvendu Adhikari as the front runner. We also know now that Amit Shah is expected to touch down at 11:30 a.m.
1: Well, yes, the Home Minister Amit Shah, also the observer for the state of West Bengal for this Legislative Assembly elections, rather post that for the selection of the leader of the Legislative Party of BJP with 207 MLAs creating history in the West Bengal Legislative Assembly. We'll be arriving somewhere around 11:30. He will then visit and offer his prayers at Dakshineshwar Kali Mandir. But here I am at the Brigade Parade Ground, where the preparations are in full swing and rains too have not been able to play a spoil sport. Even as thousands of workers are working here on ground to ensure that the mud is settled because of the entire process being hindered due to the rainfall that has been happening since past 2 days, and still there are more forecast of rainfall during the day. Chairs are being put up, but with that, three big hangers to ensure that the lakhs of people and supporters who would be gathering here are able to catch a glimpse of Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, and with that, the entire galaxy of leaders that BJP is planning to get in for one of the biggest stages that have been set in the history of Brigade Parade Ground by BJP in past several years. This also includes almost all the chief ministers of BJP-ruled states, with more than 18 chief ministers across the country, and also bringing in the new chief minister, primarily and probably Shuvendu Adhikari, who will be the official Legislative Party leader today in the afternoon, along with two deputy chief ministers that are expected to be on the cards. And with that, the entire cabinet is expected to have their swearing in here in the presence of lakhs of supporters who've been vowing and have been working for the party tirelessly for past several decades.
0: Manogya, thanks so much for joining us this morning. We will, of course, revert to you for regular updates on the preps and much more. Staying with updates from West Bengal, investigation is deepening into the chilling murder of Shuvendu Adhikari's personal assistant Chandranath Rath, and now new videos have emerged. CCTV footage has also emerged, which could hold vital clues for investigators. In fact, a 9-member SIT has begun its investigation into this murder case. FSL teams have inspected the crime scene. They've gathered crucial details as well. And sources are also saying investigators suspect the role of 5 or more people in this murder. But identifying the suspects is proving to be a challenge, because investigators highlight that the CCTV footage that has emerged is hazy. The family, meanwhile, is demanding justice, with Chandranath's mother seeking life term for the killers and Shuvendu Adhikari maintaining that this is a political murder.
2: Shuvendu Adhikari ke PA जो थे चंद्रनाथ, उनका पार्थिव शरीर अब उनके पैतृक घर, पैतृक आवास पर पहुंच गया है, और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से कल रात कई लोगों ने मिलकर इनकी हत्या कर दी, इन पर 5 गोलियाँ दागी गई, 4 गोली इनके सीने में लगी और उसके बाद उनकी मौत हो गई। हालांकि इस घटना को लेकर बीजेपी काफ़ी हमलावर है, और साफ तौर से बीजेपी और शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि टीएमसी के लोगों ने मिलकर चंद्रनाथ की हत्या की है और कहीं ना कहीं पोस्ट पोल वायलेंस एक बार फिर से बंगाल इलेक्शन में देखने को मिला है। नतीजों के बाद पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लेकिन उसके बावजूद भी शुभेंदु अधिकारी जो कि भावी मुख्यमंत्री माने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के, उनके पीए जो चंद्रनाथ थे बेहद करीबी थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और इस वक्त उनके पैतृक गांव से जो कि ईस्ट मेदिनीपुर में पड़ता है, ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यहां से आगे जो सामने उनका घर देख रहे होंगे उसके पीछे उनका अंतिम संस्कार होना है, लेकिन बंगाल पुलिस और जो सेंट्रल पुलिस फोर्स की टीमें हैं वो मीडिया को यहाँ रोक रही है, इसके आगे मीडिया को नहीं जाने को कहा गया है। लेकिन ये एक बड़ी घटना हुई है बंगाल की सियासत में, लगातार हिंसा देखने को मिलती है, लेकिन कल जिस तरीके से देर रात शुभेंदु अधिकारी के पीए की मध्यम ग्राम में गोली मारकर हत्या होती है, ये घटना ने कहीं ना कहीं पूरे पश्चिम बंगाल में सियासत को एक बार फिर से गर्म कर दिया है। और ये सीधी तस्वीर हम आपको चंद्रनाथ के पैतृक आवास से आपको दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ रमन राय, NDTV ईस्ट मेदिनीपुर।
3: की शास्ती चाहिए छी
4: हमी आई की मां हमी चाहिबो ना तादे फांसी हो किंतु जीवन कारादंड चाहिए छी और चाहिए छी जे हमरा भारतीय जनता पार्टी कोरी बोले हमरा जे क्षमता आसार जन्य हमारे सभापति विरोधी दल नेता जखन বলছেন সুশৃঙ্খল ভাবে থাকতে, তখন শাসক দলের যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল।
5: হি সিরিয়াস, পুরা রাত ওটি হুয়া হয় উনকা, দেখিয়ে এক গ্যাং নে लेफ्ट साइड से गोली किया चंद्र को, दूसरा गैंग ने विटनेस खत्म करने के लिए राइट साइड से ड्राइवर का लेफ्ट साइड में किया, कितना प्री प्लान कूल ब्लडेड मर्डर। वो अभी नाजुक है, उनका साथ बीजेपी पूरा खड़ा है, उनका ट्रीटमेंट का जितना भी जरूरी है वो हम कर रहा है।
0: हम अभी शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रौत के घर के बाहर खड़े हैं और हमारे साथ अभी मौजूद है दिव्येंदु अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी के भाई। शुक्रिया NDTV से बात करने के लिए सर। सर, आप अभी यहाँ पर आए, आप अपने चंद्रनाथ जी की माँ से मुलाकात करी, यहाँ पर अभी इस समय पर आगे क्या होने वाला है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है?
6: इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचे है मुझे मालूम नहीं है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी स्टेट पुलिस CID एंड सिट बोथ आर इन्वेस्टिगेटिंग दी केसेस। एज पर एज इंफॉर्मेशन जो आ रहा है हमारे पास, 3 आदमी को डिटेन करवा गया है और एक जाली नंबर प्लेट वाला व्हीकल भी सीज किया गया है, सिलीगुड़ी का नंबर है ऐसा कुछ। तो कैसे यहाँ आया ये तो पुलिस ही बोल पाएगा ना। कल रात से मैं हूँ उनका माँ जी के साथ, अभी सुबह गया था, सुबह थोड़ा मेरा काम था,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.

0: Aditya Raj Kaul, covering international affairs like India's unshakable news habit. NDTV.com is India's number one English news website.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: president.
1: Yeah.
0: Okay. And what about the possible coup that's really happening between the AIDMK and the DMK, possibility of an alliance?
1: We don't know.
0: No comments really. This has been the mood predominantly. We've seen most of the leaders of the TBK do not want to make any sort of statements, or they've been instructed not to make any sort of statements. The meeting is expected to get underway shortly. Adhav as well was here. He too had very little to say. But most of them, of course, off camera as well, are saying that it is going to be good news by the end of this evening for the TVK, and possibly by the 10th or 11th, there is a high chance of actor Vijay really taking oath. But at this point in time, mind you, the meetings that are happening in the city, the CPI, the VCK, the CPM, all of them, and what they will have to say by the end of this evening is going to be very crucial, especially with how the AIADMK MLAs have been reacting and saying there's good news coming. What is the possible good news as far as the AIADMK is concerned? Well, we don't know. And politics is an art of possibility, and anything is possible. That's what it looks like. But for the AIADMK and the DMK to come together is not something anybody in Tamil Nadu have probably thought about. It's what many would say an unholy alliance. It could irk the people, but what's the strategy behind a thought process like this is the question. Are they really thinking?
2: Again, at this hour, while sources have gone on to suggest that the Union Home Minister Amit Shah is now holding separate meetings with elected MLAs Shankar Ghosh and Agnimitra Paul. Now, according to sources, the discussions rather centre on the selection of the two Deputy Chief Ministers of West Bengal. Reports from sources even suggest that one of the Deputy Chief Ministers will be from the north of Bengal, while the other is likely to be a woman. My colleague Shreya Sidhe joins us on the broadcast with the latest updates coming in. Shreya, walk us through the names and also help us understand what kind of decisions are taking shape currently in West Bengal.
3: Well, there have been hectic back-to-back meetings that Union Home Minister Amit Shah has been holding at the hotel where he is situated at this point in time. Of course, the official announcement of the Chief Minister as well as the Deputy Chief Ministers and the Cabinet will be made today within a few hours, because once that is made, the party will go to Lok Bhavan and officially stake claim. It's a very, very important day for the BJP here in West Bengal. They are writing the first page of history when they will be forming a cabinet for the first time in West Bengal since independence. And we are reporting from Bishwa Bangla Convention Centre, where all the elected 207 MLAs of the party have started arriving, and they will be attending the meeting that will be chaired by Union Home Minister Amit Shah. The observer who has been appointed for the Legislative Party meeting, along with Odisha CM Mohan Singh Majhi. The top leadership from West Bengal have already arrived here at the venue. Amit Malviya, Sunil Bansal, the rest of them are all here present at the venue. It almost feels like a festival here in the city, with, of course, all eyes on the big announcement of the cabinet as well as the chief minister within the next few hours. All of us are waiting to get the names out. But of course, as we have been reporting, the front runner for the CM candidate still remains Shubhendu Adhikari. As for the deputy CMs who will be assisting the chief ministers, we are getting two names. One is Shankar Ghosh from North Bengal, and one is Agnimitra Paul from Asansol seat.
2: Right.
3: And of course, we'll be getting you all the latest information from where the action is happening right now. Back to
2: absolutely, Shreya. Of course, this will be a historic cabinet that will be sworn in, and we'll all be, of course, waiting for the names coming in. Thank you so much for joining us and sharing those updates with us. We're tracking more updates coming in from West Bengal. Well, the fog of suspense in West Bengal will dissipate after 4 p.m. this afternoon. In Kolkata, of course, the Union Home Minister Amit Shah is in the state as his party's state observer and will be a part of the BJP's Legislative Party meeting that will convene to elect their leader. During the meeting, Amit Shah is expected to announce the name of the next Chief Minister of West Bengal. Following this, the newly appointed BJP Legislative Party leader is expected to visit the Lok Bhavan with a letter of support from BJP's 207 MLAs and stake a claim to form the government. As per sources, not just the chief ministerial face, but also the name of the two deputy chief ministers will also be announced after this meeting. Now, the new chief minister of West Bengal, BJP's first in the state, will be sworn in tomorrow at 10 a.m. at Kolkata's Brigade Parade Ground.
4: उस वक्त पर जब तृणमूल की सरकार थी
1: कैसा माहौल था बीजेपी का एक विधायक बनना, असेंबली के बाहर, अपनी सीट में या फिर विधानसभा के अंदर?
4: डर का, भय का लगता था हर वक्त, कहीं ना किसी भी टाइम हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, हो भी चुका था। और मतलब अकेला बाहर जाना थोड़ा सा मतलब डर लग रहा था। जब भी जाता हूँ, उस हमारे पास सेंट्रल फोर्स था, उसको भी विधानसभा का अंदर अलाउ नहीं था। विधानसभा में भी हम लोगों के ऊपर बहुत बार अटैक हुआ है। सो टीएमसी का एमएलएज लोग, हमारा कई विधायक का हाथ भी टूट गया था, हॉस्पिटलाइज भी हो गया था। सो डर का माहौल था।
2: Well, let's bring you more updates coming in from West Bengal at the Savo. Well, the investigation has deepened into the chilling murder of Suvendu Adhikari's PA, Chandranath Rath. Now, the new video showing moments after Chandranath Rath was shot, along with a couple of fresh CCTV footages, has now emerged, which could hold vital clues for the investigators. Remember, a 9-member SIT has begun its investigation into the murder case. FSL teams have inspected the crime scene and gathered crucial details in the case. Now, sources say that investigators suspect the role of 5 or even more people in the murder. But identifying the suspects is proving to be a challenge as the CCTV footages are hazy. The family of Chandranath Rath is demanding justice, with the mother seeking life term for the killers. Meanwhile, Shivendu Adhikari called this a political murder.
5: কি শাস্তি চাইছেন?
6: আমি একজন মা, আমি চাইব না তাদের ফাঁসি হোক, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। আর চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলে আমরা আজকে ক্ষমতায় আসার জন্য আমাদের সভাপতি, বিরোধী দল নেতা যখন বলছেন সুশৃঙ্খল ভাবে থাকতে, তখন শাসক দলের যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোন ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল।
7: कारण कुछ नहीं है, कारण तो यही है जो नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों जगह पर वो दायित्व में था वोट में, लेकिन वो कभी भाषण नहीं दिया, छाया युद्ध में था। तो हो सकता है भवानीपुर में जितना पसंद नहीं लगा, उसका वजह से उसको टारगेट किया गया।
8: आपके हिसाब से ये टारगेटेड मर्डर है?
7: जो उसका राइट हैंड, शुभेंदु का राइट हैंड को पहले छांट दिया, तो शुभेंदु का मैसेज दिया जाएगा, उसी हिसाब से उसको टारगेट किया गया।
9: ही सीरियस, पूरा रात ओटी हुआ है उनका। देखिए, एक गैंग ने लेफ्ट साइड से गोली किया चंद्र को, दूसरा गैंग ने विटनेस खत्म करने के लिए राइट साइड से ड्राइवर का लेफ्ट साइड में किया। कितना प्री प्लान, कूल ब्लडेड मर्डर। वो अभी नाजुक है, उनका साथ बीजेपी पूरा खड़ा है, उनका ट्रीटमेंट का जितना भी जरूरी है वो हम कर रहा है।
8: हम अभी शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रौत के घर के बाहर खड़े हैं, और हमारे साथ अभी मौजूद है दिबेंदु अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी के भाई। शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए सर। सर, आप अभी यहाँ पर आए, आप अपने चंद्रनाथ जी की माँ से मुलाकात करी, यहाँ पर अभी इस समय पर आगे क्या होने वाला है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है?
10: इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचे है मुझे मालूम नहीं है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, स्टेट पुलिस, सीआईडी एंड सिट, बोथ आर इन्वेस्टिगेटिंग दी केसेस। एज पर एज इंफॉर्मेशन जो आ रहा है हमारे पास, 3 आदमी को डिटेन करवा गया है, और एक जाली नंबर प्लेट वाला व्हीकल भी सीज किया गया है। सिलीगुड़ी का नंबर है ऐसा कुछ, तो कैसे यहाँ आया ये तो पुलिस ही बोल पाएगा ना। कल रात से मैं हूँ उनका माँ जी के साथ, अभी सुबह गया था, सुबह थोड़ा मेरा काम था, मेरा निर्वाचनी क्षेत्र पे वो काम ख़त्म करके फिर आ गया। अभी तो अंतिम संस्कार का जो है वो होगा, उसका बाद ही हमारा नया सरकार जब बनेगा, हम लोग पूरा भरोसा में है पुलिस का प्रति, सीट का प्रति, सीआईडी का प्रति।
11: घटना हुआ है बहुत ही दुखजनक, नहीं होना चाहिए और बंद होना चाहिए। जब तक सरकार नया नहीं आता है, कुछ लोग अपना तेवर दिखा रहे हैं, ममता बनर्जी उनकी भतीजा लोग उकसा रहे हैं कि इस प्रकार हिंसा हो, लेकिन ये सब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा।
12: इसमें तो होम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं, तो उनके पीए की हत्या कैसे हो गई? ये सवाल मुझसे मत पूछिए। आप ट्विटर हैंडल होगा आपका, आप टैग करिए होम मिनिस्टर साहब को, पूछिए कि हत्या कैसे हो गई।

0: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला।
1: इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है।
2: आज के की खावे झालमुड़ी ना माचर झोल।
0: How will you celebrate?
1: झालमुड़ी माचर झोल विद रसगुल्ला।
3: You know, you remember, you promised me that you will come to Kabini and do an interview with me. You like going to

0: politics. She has led the Mahila wing of the BJP here in West Bengal. When it came to protests against a sitting chief minister who was a woman herself, Agni Mitra Paul fought from the front, and that's why the party has decided to also reward her. She has never given up. We've seen the kind of protests that she has led, the fight that she has put up against the state administration. These are all old-time MLAs of the BJP who have understood the politics of Bengal, even though they have made the fray quite late. For example, Shubhendu Adhikari is a long-time politician. He's been with the TMC. His father has been a politician. His brothers are politicians. He comes from a family of politicians. But for Shankar Ghosh and Agni Mitra Paul, this is the first time that they had entered politics. And over the years, they have built their space, their leadership, and has led the party. So, of course, a very important announcement that is still awaited. But, of course, the big story coming out of Bengal at this moment, Shubhendu Adhikari will be the next chief minister of West Bengal, taking the reign from the Mamata Banerjee administration. And of course, right, all I
1: manch par upasthit mere saath aaye hue sah paryavekshak Sri Mohan Charan Manjhi ji, hamare pradesh adhyaksh Sriman Samik Bhattacharya ji, aur ek prakar se आप लोगों के विश्वास के कारण आज के उत्सव मूर्ति और बंगाल के भावी मुख्यमंत्री श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी मंच पर उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ राज्य और केंद्र की टीम के साथीगण और आज जिसको देखकर मन आत्मा शरीर सभी के अंदर खुशी की लहर दौड़ती है, इतना बड़ा विधायक दल भारतीय जनता पार्टी का आज हमारा है, वो सभी नवनिर्वाचित विधायकों को मेरा प्रणाम, राम राम। मित्रों, सबसे पहले मैं दो हाथ जोड़कर बहुत जिम्मेदारी के साथ बंगाल की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस प्रकार का माहौल कम्युनिस्टों के समय से यहां पर बनाया जाता था, ममता जी ने इसको और गहरा तरीके से भय में परिवर्तित किया। वहां मत की अभिव्यक्ति लगभग असंभव थी। सैकड़ों उदाहरण हिंसा के, क्रूरता के, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा करकर बंगाल की जनता ने जो प्रचंड विजय हमें दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं पार्टी की ओर से यह भी कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता ने हमसे जो अपेक्षाएं रखी हैं, जिस आशाओं को संजोकर मैंडेट दिया है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके विश्वास को तनिक भी ठेस न पहुंचे, इसमें कहीं कमी न रह जाए। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व तो है कि हर निश सुनार बांग्ला के लक्ष्य को लेकर हम चले और बंगाल की जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण करें। मित्रों, आज कवि गुरु की ये पंक्तियां सच होती दिखाई पड़ रही है। चित्त जेथा भय शून्य उच्च जेथा शीर, जहां मन भयमुक्त हो और सिर गर्व से ऊंचा हो, ऐसे बंगाल का रास्ता आज प्रशस्त हो चुका है और बंगाल उस रास्ते पे चल। पांच दशक का लंबा समय लोकतंत्र की दृष्टि से, कानून और व्यवस्था की दृष्टि से बंगाल के अर्थतंत्र के हास की दृष्टि से और बंगाल के विकास में शून्य गति, नेगेटिव गति देने की दृष्टि से बंगाल के लिए एक दुस्वप्न जैसा हुआ है। और हम सबका दायित्व तो है कि मोदी जी ने जो वादा दिया है बंगाल की जनता को, इसको पूरा करने के लिए हम हमारा सर्वश्रेष्ठ बंगाल की जनता को अर्पित करें, समर्पित करें। बंगाल की संस्कृति और बंगाल की परंपरा को 5 दशक से विदेशी विचारों से प्रभावित शासन से मुक्त कर फिर से एक बार रामकृष्ण ठाकुर, विवेकानंद, महर्षि अरविंद और कवि गुरु टैगोर की कल्पना का बंगाल बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ें। हम सब की जिम्मेदारी आज से बहुत बढ़ती है। विनम्रता के साथ, जिम्मेदारी के एहसास के साथ किया हुआ परिश्रम ही इस मैंडेट का एक प्रकार से जनता को आभार के रूप में जवाब दे सकता है। मित्रों, आज बंगाल का विजय अनेक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ये हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में 1950 के बाद आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब 370 हटी तब देश भर के कार्यकर्ताओं के मन में खुशी की लहर दौड़ी थी, मगर मुझे कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अभी भी कुछ कसक बाकी है। मैंने आश्चर्य से पूछा था, भला क्या बचा अब? तब उन्होंने कहा था, बंगाल में भाजपा का झंडा फहराना बाकी है। और आज मैं मानता हूं श्यामा प्रसाद जी जहां पर भी होंगे, मुक्त मन से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को वो आशीर्वाद देते होंगे, क्योंकि नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी को गंगा सागर तक पहुंचाया, गंगोत्री से लेकर। 2014 से जो यात्रा निकली, ये अभूतपूर्व यात्रा है मित्रों। अपने पुरुषार्थ से, अपने कौशल से, अपनी प्रामाणिकता से जनमत को कैसे संजोया जा सकता है और जनमत को कैसे विस्तृत किया जा सकता है, इसका दुनिया भर के लोकतंत्र में सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है तो 2014 से 2026 की भारतीय जनता पार्टी की यात्रा। सिर्फ विचार नहीं फैला, संगठन भी विस्तृत हुआ। सिर्फ संगठन विस्तृत नहीं हुआ, विचारधारा भी मजबूत हुई। और सिर्फ विचारधारा मजबूत नहीं हुई, इसके साथ घर घर तक विकास पहुंचाने का काम भी हमने बहुत अच्छे तरीके से किया। और पूरा देश आज इस बात के लिए हमारी पार्टी और हमारे नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी जी को स्वीकृति देता है। मैं बंगाल की ही बात करूं, मैं ही अध्यक्ष बना था, उपचुनाव आया, हमारे अभी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य जी एक उपचुनाव जीतकर हमारा खाता खोले थे। 2014 की बात कर रहा हूं, 16 में 3 हुए, 21 में 77 हुए और 26 में 207 के साथ आज हमारा मुख्यमंत्री बैठने जा रहा है। ये यात्रा जितनी भव्य है, आनंददायक है, मगर यात्रा का मार्ग जबरदस्त असहनीय पीड़ा से भरा हुआ है। मैं आज भूल नहीं सकता कि 321 भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपनी जान इस जीत के लिए गवाही है, विचार के लिए गवाही। मैं देश भर में घूमा हूं पार्टी के अध्यक्ष के नाते। केरल और बंगाल इसके अलावे कहीं पर इस प्रकार की क्रूर हिंसा का नग्न तांडव मैंने नहीं देखा है। पहले कम्युनिस्टों ने और फिर टीएमसी ने। मैं आज हृदय के भाव के साथ वो सभी 321 कार्यकर्ताओं के परिवारजनों को देश की करोड़ों करोड़ों जनता की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भावपूर्वक नमन करना चाहता हूं। आपके परिवार के स्वजन ने बलिदान देकर हमारे विचार को तो मजबूत किया ही है, हमारी पार्टी को तो आगे बढ़ाया ही है, मगर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके परिवार के स्वजन का वो बलिदान पश्चिम बंगाल की सीमा को भी सुरक्षित कर पूरे भारत को सुरक्षित। ये विजय का एक और मायना है। आज त्रिपुरा में हमारी सरकार है, आसाम में हमारी सरकार है और बंगाल में भी अब हमारी सरकार बनी है। घुसपैठ असंभव होने वाली है, गौ तस्करी असंभव होने वाली है और दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले के अंदर परिवर्तित कर लेगी। भाइयों बहनों, ये जो यात्रा हुई है, बंगाल की जनता ने हमें जन समर्थन तो दिया, गत चुनाव में भी दिया था, 77 सीट जीते थे, मगर इस बार जो जन समर्थन मिला है उसका आभार व्यक्त करने के लिए भाजपा कार्यकर्ता के नाते मेरे पास शब्द नहीं है। हमारा विधायकों का जीत का एवरेज मार्जिन 28,000 है, 28,000 वोट से हम सब जीते हैं, एवरेज निकाल देता हूं। और 3 से 77, 77 से 203 की, 207 की जो यात्रा हुई है वो अभूतपूर्व है। 23 प्रशासनिक जिलों में से 9 जिले ऐसे हैं जहां दीदी का खाता भी नहीं खुला है, चुपड़ा साफ हो गया। मैंने ऐसा प्रचंड जनादेश देखा नहीं है। सरकार परफॉर्म करती है तब तो मिलता है, मगर जहां ऑपोजिशन में है, विरोधी दल के नेता को बोलने का कोई मौका नहीं दिया जाता है, जनता की भावनाओं को उजागर करने का मौका नहीं दिया जाता है, वहां पर 9 जिलों में 0 सत्ताधारी दल का, एक केवल और केवल ईश्वर और बंगाल की जनता की कृपा है। जब चलता था तब चुनाव आयोग पर ढेर सारे सवाल उठाए गए, न केवल टीएमसी, इनके सभी साथियों के द्वारा उठाए गए। मैं आज उन्हीं लोगों को बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि बंगाल में 93% मतदान हुआ है जो आजादी के बाद सबसे ज्यादा है, और एक भी कंप्लेंट टीएमसी की ओर से छापा मारने की नहीं है, बूथ कैप्चरिंग की नहीं है, एक भी नहीं है। 93% मतदान हुआ है और जहां सैकड़ों लाशें गिरती थी चुनाव के वक्त, वो राज्य के अंदर एक भी मृत्यु के बगैर दोनों चरण समाप्त हुए हैं। मैं आज चुनाव आयोग के तहत काम करने वाले सभी सुरक्षा बलों को, बंगाल सरकार के सभी कर्मचारियों को और बंगाल पुलिस को भी हृदय पूर्वक अभिनंदन देना चाहता हूं कि आपने जो काम किया है इससे विश्व भर में लोकतंत्र का मैसेज गया है। 23 जिलों में से 20 जिलों में भाजपा नंबर एक पार्टी बनी है। एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां हमारा विधायक नहीं है। पूर्व मेदिनीपुर 16 की 16 भाजपा, झारग्राम सभी सीटें भाजपा, पुरुलिया सभी सीटें भाजपा, बांकुड़ा सभी सीटें भाजपा, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। और आप लोग तो जीते हो, मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है, मगर भवानीपुर की जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। शुभेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। मैं भवानीपुर की जनता का भी बहुत बहुत हृदय पूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, इस जीत का महत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए पार्टी के विस्तार तक सीमित नहीं, इस जीत का महत्व हमारी आइडियोलॉजी के एक्सपांशन तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व भाजपा एनडीए का 21वां राज्य आए इस तक महत्व नहीं है। इस जीत का महत्व है, इस जीत ने राष्ट्रीय सुरक्षा में जो सबसे बड़ा छिद्र था उसको भरने का काम किया है, वो महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को कि न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त करेंगे। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ये ध्रुवीकरण का मुद्दा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है ना जी, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। आपका देखने का चश्मा पीला है इसलिए आपको सब कुछ पीला दिखता है, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। मित्रों, जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड विजय होती है तो पानीहाटी की प्रत्याशी श्रीमती रत्ना देवनाथ वो हमारी प्रत्याशी बनकर बंगाल भर में माताओं बहनों पर जो अत्याचार हुआ है वो अत्याचार का प्रतीक बनकर सभी माताओं बहनों को एक प्रकार से ढाढ़स बना। हिगलगंज की प्रत्याशी बहन रेखा पात्रा संदेश खाली के अत्याचार के सामने सत्याग्रह की प्रतीक, और ओसग्राम की प्रत्याशी कलिता माझी वो बंगाल के, कलिता जी के लिए ताली बजाओ जरा, बंगाल के दारुण से दारुण गरीबी में जी रही सभी बहनों के लिए एक आशा का बिंदु है कि हमारा भी प्रतिनिधि विधानसभा में बैठ जाते हैं। बंकिम बाबू के परिवार से भी बहन सुमित्रा चट्टोपाध्याय जी भी आज हमारे साथ जुड़ी हैं। और मित्रों, सबसे बड़ा बात ये है, सुमित्रा चट्टोपाध्याय जी खड़े हैं यहां पर, सबसे बड़ा बात यह है कि वंदे मातरम जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बंकिम बाबू ने की हुई उद्घोषणा थी, इसके 150वें साल में ही हमें ईश्वर ने बंकिम बाबू की भूमि पर सरकार बनाने का मौका दिया है। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों। और ये शांतिपूर्ण चुनाव आने वाले दिनों में बंगाल के लिए शुभांकर साबित होने वाला है। मैं आज इस मंच से सभी दलों को भी अपील करना चाहता हूं, आइए हम सब साथ में मिलें, लोकतंत्र ये मत की अभिव्यक्ति का उत्सव है, इसमें हिंसा कहां से हो सकती है? देश के सभी राज्यों में हिंसा समाप्त हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की विशेष जिम्मेदारी है, साथ में सभी दलों का सहयोग भी चाहिए, कि ये सरकार बनने के बाद किसी भी चुनाव में घपलेबाजी और हिंसा का समाचार देश भर में पहुंचे नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है मित्रों। और इसी के लिए हमें मैंडेट मिला है, हमें इसके लिए दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक धैर्यपूर्ण साधना के कारण ही आज ये सिद्धि भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई है। हम जहां जहां शासन में आए वहां चुनावों में पारदर्शिता लाए हैं, जहां जहां हम शासन में आए वहां पर हिंसा मुक्त चुनाव हमने कर दिखाए हैं। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि आने वाले समय में जनता का मत भय के बगैर अभिव्यक्त हो पाए, ऐसा वातावरण हमें बनाना चाहिए। और मैं आज इसमें सभी दलों का सहयोग भी मानना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं कांग्रेस पार्टी की भी बात करना चाहता हूं। कई साल से कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीतती है कई जगह पे, और अभी अभी उनको मालूम पड़ गया है कि चुनाव जीतना तो अब असंभव है, तो चुनाव की प्रक्रिया को ही कलुषित कर दो, बदनाम कर दो। इसलिए कांग्रेस के प्रमुख नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने अपनी हार को छिपाने के लिए कभी ईवीएम, कभी वोट चोरी, कभी मतदाता सूची, कभी एसआईआर, ये सब कीचड़ उछाड़ने का प्रयास कर रहा है। मगर मैं आज कांग्रेस पार्टी को कहने आया हूं कि हम तो 14 से आए हैं, हम तो 2014 से शासन में आए हैं। तमिलनाडु में 1967 से आपका कोई सीएम नहीं बन पाया, ये सभी वोट चोरी थी क्या? पश्चिम बंगाल में 49 साल से आपका सीएम नहीं बना है, वो सभी वोट चोरी थी क्या? सिक्किम में 82 साल से आपका 42 साल से आपका सीएम नहीं बना है, बिहार में 36 साल से नहीं बना है, गुजरात में 30 साल से नहीं बना है, ओडिशा में 26 साल से नहीं बना है, नागालैंड में 23 साल से नहीं बना है, महाराष्ट्र में 12 साल से नहीं बना है। अगर ये सभी वोट चोरी है तो वोट चोरी करने वाले तो आपके साथ बैठे हैं भाई, आज सारे इंडिया अलायंस के सदस्य बने हैं। मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार के लिए आत्मचिंतन करने की जरूरत है। देश की जनता राहुल गांधी को नेता बनने के बाद सैन सैन हर जगह कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट दे रही है, और राहुल जी के नेतृत्व में ही इंडिया अलायंस फिर से टूटने की शुरुआत भी हो गई। जो लोग राजनीति में आत्मचिंतन नहीं करते हैं और फौरी बहाने ढूंढते हैं, वो कभी विजय के लिए यश प्राप्त नहीं करते हैं। भाइयों बहनों, आज का विजय पूरे पूर्वी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पश्चिम और पूर्व दोनों का विकास एक समान होना चाहिए, और आज अंग बंग कलिंग और असम, एक प्रकार से पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी आज भारतीय जनता पार्टी के ध्वज के नीचे आ गई। और जिन लोगों ने पूर्वी भारत को विकास से महरूम रखा, उनको सत्ता से बेदखल करने का काम पूरे पूर्वी भारत ने किया है। मैं बंगाल की बात करूं तो बंगाल में ममता जी के 15 साल में एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा राजनीतिकरण हो गया। सारे एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख अंग उपांग राजनीतिकरण हो गए उनका, और राजनीति का अपराधीकरण कर दिया। तो एक प्रकार से पूरे बंगाल में सुशासन आए ऐसी व्यवस्था ही नहीं। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, ममता जी के शासन में एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण हुआ और राजनीति का अपराधीकरण हुआ। अपराधी ही राजनेता बन गए, तो विकास की कोई गुंजाइश ही नहीं बनी। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से बंगाल की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, भाजपा के शासन में ना एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण होगा ना राजनीति का अपराधीकरण होगा। ये हमारा बंगाल की जनता को वादा है। गुंडागर्दी, हिंसा, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, कट मनी, ये जो त्रास था बंगाल की जनता पर, हमारे नए मुख्यमंत्री के चार्ज लेते ही कुछ ही महीनों में ये सारा समाप्त हो जाएगा और बंगाल के किलोमीटरों दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक होगा। आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है, और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई है। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं, और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दुनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएगी। घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। और मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें। भारत सरकार बंगाल के विकास के लिए ढेर सारे प्रयास करती रही, मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे ये डर से दीदी ने होने नहीं दिया। आज बहुत समय के बाद एक दिन आया है कि नीचे भी कमल है, ऊपर भी कमल है, अब विकास को कोई नहीं रोक सकता। और फिर से एक दिन गोपाल कृष्ण गोखले का जो वाक्य है वो सच साबित होगा, बंगाल आज जो सोचता है भारत कल सोचता है। ऐसा बंगाल का निर्माण करने का जिम्मेदारी हम सब के सिर पर देश की जनता ने रखी है। मैं एक विशेष उल्लेख करना चाहता हूं, कला, साहित्य और संस्कृति पूरे भारत की पहचान बंगाल से होती थी। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कला, साहित्य, संस्कृति और शिक्षा, इस सभी क्षेत्रों में बंगाल देश का नेतृत्व करें। हमने एक बहुत छोटा सा वादा किया है कि जैसे पुणे में फिल्म इंस्टीट्यूट है, ऐसे हम यहाँ पर तख्ते के लिए मतलब थिएटर के लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे जो दुनिया भर के थिएटर को ताकत देगा। मित्रों, ये हमारा एक छोटा सा जेस्चर हमारी सरकार की दिशा बताने के लिए, इसके परिचय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी की ओर से, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी की ओर से, और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बंगाल की जनता को मन पूर्वक धन्यवाद और प्रणाम करता हूं, और शुभेंदु भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सफल होइए और बंगाल के जनता के पूरी आकांक्षाओं को, आशाओं की पूर्ति का आप माध्यम बनिए। शुभेंदु को मैं लंबे समय से जानता हूं, संघर्षशील व्यक्ति है शुभेंदु जी,

0: एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा है और टीएमसी के दूषणों को भी देखा है। यहां पर सुशासन देने में हमारी टीम के साथ शुभेंदु जी सफल हो गए, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और उन्होंने जो संघर्ष किया है वो संघर्ष आज परिणाम लाया है। हमारे 321 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने जो बलिदान दिया है आज उसका परिणाम मिला है। और देश भर के हजारों कार्यकर्ताओं ने बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री जी से लेकर हम बूथ के अध्यक्ष तक सभी ने मेहनत की है, इस सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक बार मन पूर्वक बोलेगा, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
1: एयरपोर्ट हमरा केंद्र।
2: All right, so for anyone who thought that the BJP had left the politics of Ram and exclusively was talking of Jai Maa Kali, that is your answer. In fact, the victory video also that the party released had both Jai Maa Kali and Jai Shri Ram incorporated in it. It's really a very clear message. And of course, make no mistake, the fact that Amit Shah at the end of the entire speech after announcing Shubhendu Adhikari should choose to chant Vande Mataram and Jai Shri Ram is a clear, clear political message. The fact that now you have had Vande Mataram, which was truncated years ago by the Congress government, now being given the same status as Janaganaman and now being chanted from stage by the Home Minister after the BJP has managed
3: Bharat
2: to install
3: Mata ki,
2: their 17th Chief Minister in
3: ki,
2: India is absolutely
3: bande,
2: no coincidence.
3: Bande, ami prathamei shraddhar sange kritoggotar sange antor theke ami shraddha ebong pranam nibedan korbo. I would like to thank the bottom of my heart, the BJP, the chief observer, democratically taking all your suggestions, has made me the legislative party head.
4: অত্যন্ত
2: বিজেপি
4: বলিষ্ঠ নেতা, আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক চাণক্য,
2: ইজ দ্য টলেস্ট লিডার,
4: সভাপতি মন্ত্রী মাননীয় অমিত শাহ,
2: ইজ নোন অ্যাজ দ্য চাণক্য,
4: সহপর্যবেক্ষক হিসেবে আমাদের
2: প্রতিবেশী অমিত শাহ,
4: মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মোহন
2: চরণ,
4: তাকেও
2: আই উড লাইক টু থ্যাঙ্ক,
4: জোহার জানাবো,
2: ওড়িশা চিফ মিনিস্টার,
4: রাজ্যের মাননীয় সভাপতি, আমার অগ্রজ দাদা, আমার
2: I would like to also give my regards,
4: মাননীয় রাজ্যসভার সাংসদ শ্রমিক ভট্টাচার্যকে অন্তর থেকে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।
2: শ্রমিক ভট্টাচার্য, the leader,
4: বছরের পর বছর ধরে
2: রাজ্য সভা এমপি and my guide,
4: পশ্চিমবাংলায়
2: years after years, over 3 years in West Bengal, this person has put together the BJP here in the state. I would like to thank
4: Sunil Bansal ji.
2: Sunil Bansal ji, I would also like to thank Bhupendra Yadav, the election observer for West Bengal, who came into the state right after Durga Puja and started working here at the grassroots level and tied us all with a single thread from Darjeeling to Digha. From Kuchbihar to Kagdeep, he has traveled across and I would like to pay my respect. I would like to also thank Mangal Pandey, the Sahaprabhari who has stayed with our party here over 4 years. I would like to thank Amit Malviya.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
6: India's unshakable news habit. NDTV.com is India's number one English news website.
7: Economy, business, world, technology. Noise filtered, numbers decoded. Insights that rewire your worldview. From governance to growth, we connect the dots. Your daily edge, your global advantage. India Business Report with me, Gauri Dwivedi. Weeknights on NDTV Profit.
8: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
9: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
10: दिस इज़न्ट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज़ अबाउट हाउ यू मूव।
11: दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस।
12: व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज़ अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी।
13: योर फ्रेंड सेड ये ले ले, वी सेड मेबी नॉट।
14: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.

या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
6: India's unshakable news habit. NDTV.com is India's number one English news website.
7: Economy, business, world, technology. Noise filtered, numbers decoded. Insights that rewire your worldview. From governance to growth, we connect the dots. Your daily edge, your global advantage. India Business Report with me, Gauri Dwivedi. Weeknights on NDTV Profit.
8: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
5: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
9: Launch control 0 to 100.
10: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
11: This car makes no sense, yet it makes every sense.
12: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
10: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
13: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure versions.
14: Our teams on.
15: राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति आभार प्रकट करता हूं, अमित शाह जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेते हुए विधायक दल का निर्वाचित हुआ हूं, सब विधायक का समर्थन हुआ, बीजेपी में डेमोक्रेसी है, सब विधायक लोग ने चुन के चुना, संगठन को लेकर जनता को लेकर जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया है चुनाव के दौरान वो पूरा करने का काम कर।

0: in the Biswa Bangla Convention Center, but also the victory song that the BJP released, very carefully ensuring that Jai Shri Ram figures as prominently as Jai Ma Kali. Listen.
1: Ek var man purvak bolega, Vande, Vande, Vande, Jai Shri Ram, Jai Jai Shri Ram. 23 प्रशासनिक जिलों में से 9 जिले ऐसे हैं जहां दीदी का खाता भी नहीं खुला है. सुपड़ा साफ हो गया. मैंने ऐसा प्रचंड जनादेश देखा नहीं है. सरकार परफॉर्म करती है तब तो मिलता है, मगर जहां ऑपोजिशन में है, विरोधी दल के नेता को बोलने का कोई मौका नहीं दिया जाता है, जनता की भावनाओं को उजागर करने का मौका नहीं दिया जाता है, वहां पर 9 जिलों में शून्य सत्ताधारी दल का एक केवल और केवल ईश्वर और बंगाल की जनता की कृपा है. भवानीपुर की जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं. शुभेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था. मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था. वो कहती थी मैं इनके घर में लड़ने के लिए चली गई. दीदी इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है. आज त्रिपुरा में हमारी सरकार है, आसाम में हमारी सरकार है और बंगाल में भी अब हमारी सरकार बनी है. घुसपैठ असंभव होने वाली है, गौ तस्करी असंभव होने वाली है और दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले के अंदर परिवर्तित कर ले. कई साल से कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीतती है कई जगह पे, और अभी अभी उनको मालूम पड़ गया है कि चुनाव जीतना तो अब असंभव है, तो चुनाव की प्रक्रिया को ही कलुषित कर दो, बदनाम कर दो. इसलिए कांग्रेस के प्रमुख नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने अपनी हार को छिपाने के लिए कभी ईवीएम, कभी वोट चोरी, कभी मतदाता सूची, कभी एसआईआर, ये सब कीचड़ उछाड़ने का प्रयास कर रहा है.
0: बाय द वे, यू नो एवरीवन हैज स्पोकन अबाउट दिस होल सैफरन नैरेटिव ऑफ शुभेंदु अधिकारी. ऑल्सो रिमेंबर, ही हैज डिलीवर्ड मेदिनीपुर for the BJP. In that entire area, only two seats, right, have gone to the Trinamool Congress. So he has more than doubled the BJP's tally in Medinipur and sidelined the TMC there. Advocate Shabnam, what has happened to the TMC? Wipe out in 9 districts. You don't even have a single TMC MLA.
2: Actually, it happened, a lot of political changes, anti-incumbency, anti-incumbency women votes, Hindu votes consolidated, and Muslim also their votes division, and that the youngest group, means which is the voter, youngest voters, or who are new voters, they have chosen BJP.
0: Why?
2: Because for many reasons, for their employment, for their much more development in their sphere of research work or anything, and they opted for double engine Sarkar, because so that they can get the aids from center for all this.
0: Shabnamji, you don't sound like much of a supporter of the TMC. We are saying that they chose double engine because the
3: from a youth supporter
0: and the women had no hopes from the TMC. What happened? You have a youth icon, Abhishek Banerjee.
2: No,
0: you have a woman as the chief minister, and yet they are looking at Shubhendu Adhikari and Narendra Modi for hope. Why?
2: These are all the anti-incumbency played. You know, when anything is coming up for a revolution, what Dada has truly said, Gautam Da, that when the revolution starts, it starts from like from students, youths, from state employees, for everywhere it started. And that syndicate Raj, everything it started like this way.
0: Okay, I'm glad at least we are recognizing things like syndicate Raj, because the amount of consolidation that happened, it needs to be put out in terms of numbers. Before we do that, let's quickly listen into what Shubhendu Adhikari said today.
4: Skali theke arjikor hoye joto ma boneder upore konnader upor ottachar hoyeche.